0: Shala. Helar na Shala.
1: अकान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: Aktive HFM, nur die Ecke Megahertz.
1: ये वो एक पे पिक्चर आ रही है ना?
2: कौन सी?
1: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी।
3: अरे
5: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना।

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर, बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं। मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर। फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया। फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर। फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है। पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला। पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर, हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर। हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर। और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं, एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है।
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मी सवाल का जवाब फणवाने पीएसए में आमे दोरे को बालाना साल शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे में दम पार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता एक वस्कुरी एक गेंदा बालाना साल मी शोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को एफआर नगा गुरतुं खास हादिया एली बेने एमए गिने सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कोमे महगेवेस एमए फहुशोगा
2: गेस्ट द डायलॉग मी वालदिनी मी हफ्ता के गेस्ट द डायलॉग मी बाया जवाब फोनो मुदानी पीएसएम यामे देरको बालालन सली शोया मी हासा मशो गे इतुरु बैतक दिम गे कुरिन दिवेहि अमिल राव गे लव हिमनाल देना लव एफओ शो गे कुरिन कुरि बैतक आयकी का बदल कोलाना

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं. एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है. मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता एक स्कूरी एक गेंदा बालाना साड़ी मी शोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा कोई फारणगा गुरतुम खास हादिया लि बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कौन में महे गिवस एम में फहु शोग
2: गेस्ट द डायलॉग. ফিল্মি দুনিয়া কুরিং উফাদ্দাফাওয়া ফিল্ম তং আলুং উফেদ্দুমাকি ওয়ারং আমুকামে এ ফিল্মেন আলুং এহেন মুলিং আ বেলুন তেরিনতাকং আমাজ কোং আ স্টাইলেগ হুশালা দেকামি বাইফার ফিল্ম তাকলিবে ইতুর কুরিয়েরুমে মি হফতাগে এরা মিহার মিব্যাগ মি বালালানি এফাদ ফিল্মকা
3: এরা মিহার

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं. एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है. मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम पार गड़ सु मिनट कौन में हफ्ता एक उस कुरिये गिंदा बालाना साड़ी मी शोग गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास हादिया ली बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौन में महे गिवस एम में फाहुश होगा
2: गेस्ट डायलॉग. ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾಣು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮದಿ ಬಾಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ ಕಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇ ಹುಂತೇನ ವಾಕಿ ವಿಲಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯ ಹುಂತೇನ ಬಾಜವಿರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದೆ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಬಾಲಾಲನ್

0: नौ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम ईशान हमारा दोबारा गुटु
1: नौ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह